0: सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.10 छ। विजय एफएम को फेसबुक पेज एवं यूट्यूब संगे हम पात्रो र नेपाली पात्रो मोबाइल एप्स मार्फत संसार भरक साथ प्रसारण भैर बिहान 6:30 बजे को विजय खबर में माया कड़ेल को नमस्कार। विजय खबर में प्रमुख खबर का मुख्य मुख्य शीर्षक। नवरात्र को तेस्रो दिन आज चंद्रघंटा देवी को विशेष पूजा आराधना गरिदे। नारायणगढ़ बजार को भीड़भाड़ अव्यवस्थित व्यापार नियंत्रण में टास्क फोर्स सक्रिय। चितवन को बीपी कोईराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल को कार्यकारी निर्देशक में दोस्रो पटक डाक्टर विजय चंद्र आचार्य नियुक्त। चितवन राष्ट्रीय निकुंज में जीप सफारी पुनः संचालन। पर्यटक ने अब वन्यजंतु अवलोकन गर्न पाउने। र चितवन उद्योग संघ को 3500 साधारण सभा में व्यक्ति तथा संस्था सम्मानित। सरकार ने 67,50,00,000 को धान खरीद करने। सवारी दर्ता तथा नामसारी का लागि सवारी धनी स्वयं यातायात कार्यालय उपस्थित होना नपर्ने। सूचना यस जयश्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 24 औं साधारण सभा तथा 8 औं अधिवेशन यही कार्तिक 14 गते सम्पन्न हुने भएको हुँदा साधारण सभा तथा अधिवेशनको तयारी एवं आवश्यक व्यवस्थापनका लागि यही असोज 29 गतेदेखि सदस्यता नवीकरण कार्य बन्द रहने भएकोले सम्बन्धित सबै उपभोक्ता सदस्यहरूले यसै सूचनालाई आधार मानि समयमै सदस्यता नवीकरण गर्नु हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। भीम बहादुर कुमाल अध्यक्ष एवं जयश्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कैंडाकोट नवलपुर।
1: श्री हरिहर मन्दिर कैंडाकोट साथ को सादर निमन्त्रणा। श्री हरिहर मन्दिर परमानन्द सन्यास आश्रम देवगढ धाम का पिछाधीश श्री 1008 स्वामी ज्ञानानन्द

0: BJ 淡静 विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 24437।
1: अहिले बिहानको 8 बज्यो।
2: विजय एफएम